0: गांव में गोहरे के बस ईट कुरिंग निहार ऑर्डर कर दो ना।
1: मम्मा, I don't feel so good।
2: मम्मा मेरे नो को कैरी का। तीन का वह बेस बोला। ऐरा वह रंगल वाले।
1: ओके पारी मम्मा बाली विज्ञा यो। एनुं का को मम्मा बालानी।
2: कोको एक का महास्तुए। मम्मा बाली विज्ञा बालान में होंगे बतिले।
3: कोको हास्तुए। अंगे नुं नंग हास्त कमन अपलसी के दशों। बोटो बाईया का कोरी मत विज्ञा ना माली यही तेरे कंफोर्ट को देन। इतुरु मालुमात हो दं एकिंग हाय सुमे सुमक का गुड़ाला।
2: एलाइड आइलाया मरहबा।
4: राज्य गति दुनिया के कोमे ताकवस मोड इज पोस्ट ऑन फोनोए
5: अय्या आरिंग अमांदी नीमी मगे रसकमा गंडवरा अमिन्ना अलुंडा कलेया एकमक गंडोरतरे आला परि कापेट्टंग हरें बेनो एनो मुरीहा चकलेया एयो एई सीधा जेनुइन तुर्की कापेटु मियारे गन्ना कवेस नुदिबे कले कोंता कोतेवलेनी बला जेनुइन तुर्की यूरोप आदि हुरियातनगे कापेट्टी बें एरी प्रोक्सीगा गंडोरतरे आलम वेस्ट ऑफ द नेवियस इंडस्ट्रियल लेवल लेगे मिहुं इंस्टॉलवस कोद्दे सीको आ आयके कापेट्टा प्रोक्सी